उपज होमे तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै होमै दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुखदाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा।

जे सतगुर सेवन से उभरे हर से ती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम त्याए तुर पूर्व करता लिखिया इन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ बिन सतगुर प्रतीत ना आवे नाम ना लागू पाओ सुपन सुख ना पावी दुख मह सवै समाए जे हर हर की कै बहुत लोची है कीर्तना मेटिया जाए हर का भाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिख फल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमावंदे बिख होमै तज बेकार मन हठ कितै उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र शुद्ध हो जाए मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निदान है।

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए।

गुर कै पाणे जे चलह ता अन दिन राचह हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडह चहो दिस जाहे, जेता उडह दुख घणे नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिय तै नित जालिय ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट

सोहनी गुर कै ही तप्यार। सच्ची भगती सच रती दर सच्चे सच्यार। आए से प्रवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदी नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले। हर

भाई दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुर भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाए।

पंडित पड़ पड़ वाद विखाण है बिन गुर परम पलाई लख 84 फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुरे अपने बिटो जे हर सेती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाय। चौथे पद मह सहज है,

सहज मलाइसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ ज्योत।

है, सहज कर है व्यापार। हर दिन लाहा हर नाम लैन, अखुट भरे भंडार। नानक तोहट ना आवई, दिए देवन हार। श्री राग महला तीजा, सतगुर मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाय। पूरे शब्द सब सूझी हुई, हर नामे रह समाय। मन मेरे सतगुर स्यों चित लाय, निर्मल नाम सद नवतनु, आप वसै मन आय। रहाओ हर जियो राखो अपनी सरनाई, ज्यो राख है त्यों रहना। गुर कै शब्द जीवत मरे, गुरमुख पव जल तरना। वड्डे भाग नाउ पाईए, गुरमत शब्द सुहाई। आपे मन वसिया प्रभ करता, सहजे रहिया समाई। इकना मन मुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया।

सग निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराध है गुरु।

पुजै सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारै जाऊं। मन मुख सच ना जाननी।

ललता देख के भज पे सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना। लख चौरासी फिर दे रही बिन सतगुर मुक्त ना हुई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवां। जाको मुश्किल अत बने टोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना। साख पे भज खले सबो भजे आसरा। चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म। लगे न तत्ती वाओ साहिब नितानिया का तान। आए न जाई तिर सदा गुर शब्दी सच जान रहाओ। जे को होए दुबला नंग।

ना किस होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म ना निश्चल होवै राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संघार।

मुख सिमरत तरिया शास्त्र सिमरत वेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिकदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यो रंग दोहां सिरिया का खसम आप अवर ना दूजा थाऊ सतगुर तुठै पाया नानक सच्चा नाम तेरी राग महला पंजवा घर पंजवा जानो नहीं भावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाओ ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी ग्रस्त तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुर्ग मच पाया।

सिरे सिर तम दिलाया वेख की तायापना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिलिय परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत भरम भलाया आपो तुद खवाया प्रताप लगा दुहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दुहागणी क्या निशानिया खसम हो खुथिया फिर निमाणिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लय मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम वखाणी है सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हों सतगुर बिटों कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संयम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब किस जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करै जयकार जियो मेरा गुण अवगन ना बिचारिया रब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे ना तत्ती वाओ जियो मैं मन तन प्रभु त्याया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस भावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चकाया कृपा करकै अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थामू मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो
हाँ गुर मिले एक पछाणदा, दुइया कागल चेतना जानदा, हर इक तै कारे लायोन, ज्यों पावे तिवें नवाहे दियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो पाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हाँ हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हाँ आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया, कन कोई कढ ना हंगई, नानक बुट्ठा कुग गराउ जियो, हौ वारी घुमा जामदा, इक साहा तुद ते आएदा, उजड़ थेहो वसायो, हौ तुद विटहो कुर्बान जियो, हर इठे नित ते आएदा, मन चिंदी सो फल पाएदा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निदान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

दड़ाया। सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुनहो अरदास जियो। फूक बजाए सब डिठियां, तुस आपे नयन छडाए जियो। हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रियान दा। सब सुखाली बुठियां, इहो हुआ हले मीराज जियो।

पहले पहरे छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जारिया मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा, अंदुले नाम ना चेता, राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गए झूठे, तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा, तीजे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जिन्हें बन जारिया मित्रा, आम घटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया, सब किछे अपना कर कर राखिया, खिनमह भया पराया, बुद्ध वसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए, कहो नानक प्राणी तीजै पहरे, प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन कै बणजारिया मित्रा, बिरध भया तन खीन, अखी अंध ना दिसई बणजारिया मित्रा, कन्नी सुने ना वैण, अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा कौ ताणा, गुणी अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुखे आवण जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै, आए चलै क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पछाण, ओड़क आया तिन सहया बणजारिया मित्रा, जर जरवाणा कन्न, एक रत्ती गुण ना समाणिया बणजारिया मित्रा, अवगण खड़सन बन, गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जम्मण मरना, काल जाल जम जोहे ना साकै, पाए भगत पै तरना, पत से तीजावै सहज समावै।

बन जा रहा मित्रा, हर पाया उदर मंजार, हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा, हर हर नाम समार, हर हर नाम जपे आराधे, विच अग्नि हर जप जीवया, बाहर जन्म भया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवया, जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी, कर हृदय गुरमुख विचार, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर जपिय कृपा तार, दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा, लै मात पिता गल लाए, लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, दित्ते नो लपटाए, कोई गुरमुख होवे सो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाए, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, तिस काल न कबहू खाए, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, मन लगा आल जंजाल, धन चितवे धन संचवे बन जा रिया मित्रा, हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई, एहो धन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई, जिसनो कृपा करे गुरमेले, सो हर हर नाम संभाल, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, जे जाए मिले हर नाल, चौथे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, हर चलन वेला आंदी, कर सेवहु पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा, सब चली रहण विहांदी, हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग होवो, हर सीती सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खोवो, गुर सतगुर स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलियो रहण भगतां दी, श्री राग महला पंजवां, पहले पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, धर पाए ता उदरे माही, दसी मासी मानस किया बन जा रिया मित्रा, कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे, इस जनते वस किछ नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, धर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रिया मित्रा, मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेवया, सिर ठाडी जम जंदारा, धर्म राय जब पकरस बबरे, तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, एक संचय अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रिया मित्रा, अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे, साध संगत स्यों संग न किया, बहु जोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रिया मित्रा, तेरा दरगाह बेली होए, गुरमुख नाम संभाल प्राणी, अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई, सगली रहन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुर चानन होए,
कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद का बनजारिया मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिनवना देव नी बनजारिया मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोह दरबारी मनमुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़ कम सिखे सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया बिच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हऊ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एव कड़े हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सुहंदी सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़े नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कार्ज सोया वर पाया पुरखे आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवरे मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन

मन प्यारिया जीओ मित्रा गोबिंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले, संग सहाय हर नाम त्याय बिरथा कोई ना जाए। मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए, जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जीओ मित्रा दिक सागर संसारी, चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे। गुरपूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै, आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी। नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे, मन प्यारिया जीओ मित्रा हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जीओ मित्रा हर दर निश्चल मल्ली, हर दर सेवे अलख अपेवे निश्चल आसन पाया। तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली। नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली, मन प्यारिया जीओ मित्रा कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जीओ मित्रा हर नाम जपत परगासो, सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया। पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वचुनिया, अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो। नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जीओ मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जीओ मित्रा हर जल मेल जीवे मीना, हर पी आगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे। श्री तर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुरु तुठे, लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्बस ठाकुर दीना। नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के शंत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना। हठ मजाहू महापिरी पसे क्यों दीदार, संत सरनाई लभ

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी, नाथ के नाते सब कै साथे, जप जुए जन्म ना हारी है, नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है, दखना धूड़ी मजन साधखे, साईं थिए कृपाल, लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल।

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोहया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया हो।

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूनिया रंग कुसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजा लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सुपाए भगती रंग न उतरै सहजे रह सुमाए पौड़ी श्रेष्ठ उपाई सब तुद आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुहो कूड़ कुसत तिन्नी ढाया तुद आपे पावे सो करह तुद ओतै कम ओए लाया एक ना सच बुझायो न तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजै पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहु न कटिए फिर आवे जाए मनमुख किशु ना सूजै अंधोले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाय नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चै शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माहे बिन नावै त्रिग जीवास गुरमती नाव पाईऐ मनमुख मोहे विनास ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासु मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

कर्म प्राप्त होए, सत्य रत्ते गुर शब्द स्यों, तिन सच्चे सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़े, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगवती जो भगवंत जाने, गुर प्रसादी आप पछाणे, धावत राखे इकत घर आणे, जीवत मरे हर नाम बखाणे, ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत

पूर्व लिखिया सु मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मुख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिनको हुआ कृपाल हर से सत

पहला क्या हंस क्या बगला जहां को नदर करे ज्योतिष भावे नानका कग हो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पह आखी है कार्य दे सवार सतगुर सच साखी है संता संग निदान अमृत चाखी है तै पंजन मेहरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है सलोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौ बलिहारी तिनको जिन त्याया हर निरंकार होना के मुख सद उजले होना नु सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुर मिले उल्टी पई नवनिद खर्च्यो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर निज कर वसे निज थाए अनहद धुनी सद वज दे हुन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया धुर पाए पौड़ी हौ ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देव हो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया हर दाता हर नाम जपाया नानक पै नाया शुद्ध

जननी जानक सुत बड़ा होत है इतना कुमा जान है जे दिन दिन अवद कटत है मोर मोर कर अधिक लाड तार पेखत ही जमराव हस है ऐसा तै जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिख्या रस इत संगत निश्चौ मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै ता लागै भाव परम भलावा विचो जाय उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत नाही मरना हुक्म पछाण ता खसमै मिलना रहाउ दूजा श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन आग लड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कहे मिल मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रविदास समदल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया बड़ भागी हर नाम ते आया गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

मंगाई। हर जियो कृपा करहो गुर मेलहो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा, मद सूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वडभागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई।

करहो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै, हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो, माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल।

मित्र सखा सुप्रीतम पाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणी, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हम मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मनुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पी चै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरे अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइय, मिल सत संगत हर नाम त्याइय, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरम

उत्तम दसे तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां

रहाउ एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है त्रिया तुद भगवंता मोहे रहण ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाउ भाग होवा गुर संत मलाया त्रब अवनासी घर मह पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हौ कोली जियो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद संभाली सो काम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित हृदय तू गुठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निद तेरे अखुट भंडारा जिस तू देहे सो तृप्त अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सब को वास्ते तेरी बैठा घट घट अंतर तू है बुठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे ना दिस है बाहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मन मुख जन्म पवाए नानक दास तेरा बलिहारे सब तेरा खेल दसाहरा जियो माज महला पंजवा अनहद वाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा महतारी लाई आसन ऊच सवारिया जियो फिर किर अपने ग्रह में आया जो लड़ींदा सोई पाया तृप्त अगाए रहया है संतो हो गुरे अनपो पुरख दिखारिया जियो आपे राज ने आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पकारिया जियो जेहा डिठा मैं तेहो कहया तिस रस आया जिन भेद लहया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो माज महला पंजवा जित घर पिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया आनंद बनोद तितै कर सोह है जो तन कंत शिंगारी जियो सा गुणवंती सावड भागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ बचखण जो तन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई प्रधानी सब शिंगार बने तिस ज्ञानी सा कुलवंती सा सबरहाई जो पिरकै रंग सवारी जियो महमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मलावे जियो खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ इशनाना निवली कर्म आसन चौरासी इन मह शांत ना आवे जियो अनक बरख किए जप तापा गमन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहि साध मलाया मन तन सीतल धीरज पाया प्रभ अवनासी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम गोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो हो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारी गुरमुख संगी कृष्ण मरारी दयाल दमोदर गुरमुख पाईए होरत कितै ना भांती जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकांती जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा
ਵਡ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਤਿਤ ਤਰੀਐ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੀਉ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਭਾਣੈ ਉੱਜੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ, ਪਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵਾਹਾ, ਪਾਣੈ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ, ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਆਗਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਨ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਵਿਦ ਧਾਵੈ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੀਏ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਰੂਪ ਗਈ ਹੋ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ ਜੀਉ, ਬਾਰਕ ਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਮੰਗਾਂ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ।

ज्ञान तृप्तायण गुरमुख अमृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे तुद त्याई एह समत गुरु ते पाई नानक की तर तू है ठाकुर हर रंग पार परीवा जियो माज महला पंजवा धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूरत चसे पल घड़िया धन सो उए संजोगा जियो उदम करत मन निर्मल होआ हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तै आप बखाणी गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पहनण नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमाशे नाउ नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पह वस्त एक मांगो करो बिनंती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया देहो संतन की धूरा जियो तुम दाते तुम पुरख बधाते।

दर्शन तेरे पवन पनीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से पूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए वडदाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिन सरहण ज्यो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किश दिया पली आ जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किश लैना। शक्ति अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली सीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दी जय जित विसरह नाही। सा मत दी जय जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा। ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा। सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई। सोई जप जो प्रभ जियो पावे, भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारी, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने

हर हमरा हम हर की दासी, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे, मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निदान तिसह प्रापत, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना, जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा, जिस मस्तक पागी ठा जियो। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे, किस लग मुक्त भये कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई, कहो नानक विरली दीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर, लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन पेखत पए पनीता। सगल उदारी पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना। गुर कृपा ते सच त्याई जियो, जाको खोज है सर्ब उपाए। वडभागी दर्शन को विरला पाए, ऊच अपार अगोचर थाना। ओह महल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा। मुक्त पया जिस हृदय बसेरा, गुरबंधन तिनके सगले काटे। जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभु कृपा ते हर हर त्याव। प्रभु दया ते मंगल गाव, उठत बैठत सोवत जागत। हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोको साधु दिया। किल बिक काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा। सगल बनासी

अब प्रत पाले सेवक सुख दाता, पाणी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब विद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही।

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश घर में है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटहु जो मन तन तुद आराधे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जियो से वड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपुत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी सरण परिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निद तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल।

दया धारी तिन सिरजनहारी, जी जंत सगले प्रतपारी, मेहरवान किरपाल दयाला, सगले तृप्त अगाए जीओ, वन त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया, करनहार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसै आराधी, मन की आस पुजाए जीओ, माज महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा

माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो धरते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जीओ, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, होई कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर मह आया जीओ, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जीओ, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

तेह गुर प्रसाद मन धारू तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जीव सत सत सत प्रभ सो।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जन

कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे खिन मह सगल उदारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से असथल सोइन चौबारी जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा,

आठ पहर तुद त्याई जीओ माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाद लगी लिव अंतर सोरा।

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, आपणिया संतां नूं आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वापारू, सहज आनंद गावहै गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई, सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाई, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटोह कुरबाणो जीओ, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत करम न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीओ, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

नानक सच तिहाई साधही अंतर जामी जानू जीओ माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूरत सिमरत पल वंज है।

तिन्ही सुख पाया। सो जन्म न जूऐ हारी जीओ, नाम अवखद जिन जन तेरे पाया। जन्म जन्म का रोग गवाया।

ब्रह्म नम छिकारिया, एक सवेण होर दूजा नाई, बाबा नानक एह मत सारी जीओ, माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारी, सरबस दीजै अपना वारी, आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवां सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया।

सा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागै, जिस लाए लए सो चरनी लागै। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल जिन देखे सब उतरह कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनसिया भ्रम भउ तीठा जीओ माज महला पंजवां झूठा मंगण जे कोई मांगै।

मन लागी गुण गावे अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लेना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निश्चल पाइए नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावनिया लेखा मांगे तां किन दीए सुख नाही फुन दूए तीए आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मलावनिया आप करे।

तैनाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किस नदर ना आवे मन मुख पाप पचावनिया एक रंग राते जो तुद आप निवलाई पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावनिया हर जीओ तेरी सदा सरनाई आपे बख्शे दे वडियाई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम त्यावनिया अण दिन राते जो हर पाई मेरे प्रभ मेले मेल मलाई सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच बखाणी नानक नाम रते बैरागी।

सदा नाली, गुरप्रसादी को नदर निहाली। मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा, कर कृपा आप मनावणिया, माया मोहे एहो जग सुत्ता।

गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवट्टी लावणिया। हों वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया। अंजन माही निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा। गुरमुख हो ऐसोई पाई, आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई। सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा। प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे

तलाया। तुद सलाहे ना रजा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

माज महला तीजा आपे रंगे सहज सुपाई गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाई मन फन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हौ वारी जी ओ वारी निरपो मन वसावणिया गुर किरपा ते हर निरपो त्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धोता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूजै मरन लखाए आए नहीं बूजै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामै जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मोख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती।

सह मन अंतर दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई। हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया। हर सत संगत आपे मेलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाउ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हो मैं मैल गुआई दर सच्चै सो

निर्मल बाणी शब्द वखाण है। सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौनिद नाम मन वसावणिया। सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया। अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा। भरमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा। नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी। बिन नावै सब परम पलाणी।

रे बिदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावने आ आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावने आ गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त हुई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम तिहाई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कहै गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन वै संतर।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम आधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिव लाई, अमृत गुर प्रसादी पाई। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणिया। सो किश करै जो चित ना होई, तिसदा हुक्म मेट ना सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पी आवणिया। अजब कम करते हर केरे, एहो मन भूला जांदा फेरे।

अमृत हर बाणी सतगुर सेविया हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा त्रिपतासी कर कृपा तृष्णा बुझा।

लाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

सच राती सच सुन आख बखानिया मनसा मार सच समाणी इन मन दीठी सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुरु कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सची लिव लागी हर नाम संभाल है से वडभागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत न आई तृष्णा जाले सुध न काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरत है सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निकल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर पर साधु सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहि समाणी निर्मल बाणी हर सालाही जप हर निर्मल मैल गवावनिया हों वारी जीओ वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द साही शब्दो सुन तिसा मटावनिया रहाव निर्मल नाम वसिया मन आई मन तन निर्मल माया मोह गुआई निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावनिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावनिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे हों मैं मैल गुर शब्दे धोवे निर्मल वाजे अनहद धुन बाणी दर सच्चे सोभा पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो

माया मोह इस मनह नचाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी वज्जे शब्द बजाई, गुरमुख भगत था

चार दुख पाए मन मुख अंधे सूझ नाही फिर घिर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हउमै मैल जाए बैस सुखान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हों मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जीओ वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर सेती चित लावणिया रहाउ गुरमुख जीवे मरे परवान आर जा ना सीजे शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरे कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हों मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रह दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख अन दिन शब्द राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया बाज गुरु है अंध अंधारा।

फेरा, जम्मण मरण ना चूकै फेरा, गुरमुख हो ऐसो हों मैं मारी, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलकै सृष्ट उपाई, दुए मार जाए इकत घर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माही दूजे पाए अनेरा, चानण होवै छोड़ै होमै मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया, अंतर जोत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, कमल बगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया, अंदर महल रतनी परे पंडारा।

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे भाई कर लाई नाम भूले दे सजाई तड़ी मोहत का लेखा लेवे रतियों मासा तोल कढावनिया पे अड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही खरी कवाले कुरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे अड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावे सेज सुहावनिया।

पढ़ बुज मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह दर सच सोभा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहया समाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं बूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे हैं गुर शब्दी मुक्त करावणिया इहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंदे ऐसे।

कै शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै एको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते।

हो जलाई सो हर सिउं चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुर पूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवै बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

पूरे गुर कै शब्द त्याई शब्द सेव सुख पावनिया रसना गुणवंती गुण गावे नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर फेरे आवन जावनिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ भंजन गुर शब्दी सुख पावनिया माज महला पंजवां कर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जीओ किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जीओ कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै एह बिद कौन प्रगटाए जीओ कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जीओ गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जीओ हउमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जीओ गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै गुरमुख बिद प्रगटाए जीओ गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जीओ सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जीओ माज महला पंजवा प्रभ अवनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

कर कृपा दास नदर निहाली, गुण गावह पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया, एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ मह तुम ही पाला, माया अग्न ना पो है तिनको, रंग रते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जाननिया, जिसको तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगे काई, तू साहेब सरन सुख दाता, सत संगत जप प्रगटावणिया, तू ऊच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवां कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना सही पाई है, तत्ती वाओ ना लगई, जिन मन बुठा आए जियो, से सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे, हर तन जिनी संजिया से।

बिछड़े कर कृपा में लोह राम चार कुंट दह दिस ब्रह्मे थक आए प्रभ की शाम तेन दुध ते बाहरी कितै न आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम हर नाह न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम जित घर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सरब शिंगार तंबोल रस सण देही सब खाम।

जिसका नेह चल ताम चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घना संत जना मिल पाईय रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाई लगा वैसाख तीरन क्यों वादियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेट हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन हर सज्जन दावन

जेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन।

कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरु वह रोज कीता किशु ना होवई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग नानक कौ प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवै साध संग बिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया इनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरिया हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम।

अलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच्छ पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिहा अवरना दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सुवारियों निश्चल दितियन जाय संसार सागर ते रखियन

आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर पिर बिन चैन ना पाई है खोज दिते सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

नानक जग तू का धवलहार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट अपाती रंग परंग अपार जना बहो बहो विद भांति तू जान है जिन अपाई है सब खेल तमाती एक आव है एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया बल बल हो तिन जाती।

कमावै सो चहो कुंडी जानिए। जो धर्म कमावै तिस धर्म नाउ होवै, पाप कमाणै पापी जानिए। तू आपे खेल करहै सब करती, क्या दूजा आख बखाणिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोलै, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक है, तुदे आपे तंद लाया। मोह ठगौली पायक है, तुदे आप हो जगत खुआया। तिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया। सहसा एहो संसार है, मर जमै आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जां तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना। विन हत्थां करना जीबै बाजो बोलना, इउं जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा।

है जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मनिया गर सच्चै सचियारा।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दतार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवे तीनवा सोम होवे दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

पाला कपड़ हुए खाना हुए वाऊ सुरगै दिया मोहनिया इस्त्रियां होन नानक सबो जाओ पी तू है सालाहना आखन लह ना चाओ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिया देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपी है बिनना वै वेकार परमे पची है राह दो है एक जाने सोई सिजसी कुपर गो कपराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान।

तेज सुखाली की जह भोग बलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम वेण सबे टोल वडास। पवड़ी जाति दे क्या हाथ, सच परखिए मोहरा हुए हाथ, मरिए चखिए सच्चे की सरकार, जुग जुग जानिए हुक्म मने सिरदार, दर दी बाणी है फुरमानी है कार, खसम पठाया तबल बाज दी चार, शब्द सुनाया एक होए असवार, एक ना साखती इकनी बदे पार, इक ना ताकती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया, कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहेठ, जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए, रस कस टटर पाईए तपै तै बिल लाए, पीसो फोग संभालिए।

मेरवद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर दरख्त आब आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

देखाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावै जल नावै जां तुद

सिख कहावै जा तुध भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुध भावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुध भावै जाहे दसंतर सुन गल्लां घर आवै जा तुध भावै नाहिर चावै तुध पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जा तू वड्डा सब वडियाईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है सलोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई अंधेरै राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिदगत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अपुल है ना भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन कियां मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलै तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लईन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उते अमृत वंडी है कर्मी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

गुण गाहक एकवान भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए। सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के।

यार मन वसाइए मोहतना चसा विलम भरिए पाइए गुर प्रसादी बुज सच समाइए सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस हंडन करमा बाहरी महला पहला मत पंखे रू किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब उच्ची परीत नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह भीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्नी नाउ बसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक जुग जुग एक मन वसावना सलोक महला दूजा मंत्री होए अठूहिया नागी लगे जाए आपण हथी आपने देखू चाया पे लाए हुक्म पाया तुर खसम का अति हूं धक्का खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरिया आपे खसम वेख कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसमुह पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

नानक बख्शे बख्शी है, नाही ता पाही पाही। महला पहला। नानक बोलन चखना, दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दुए दर कपड़े। पहर है जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है, तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चा पुरख अलख सिरज निहालिया। उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया, सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया। पाया रतन कराह दीवा बालिया, सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया। ए डरिया डर लग गर्भ से गालिया, नाम भुला जग फिर बेतालिया। सलोक महला तीजा, पै विच जम्मै पै मरै,

कमाए। नानक पैवन जे मरे मुहे काल उठ जाए। पौड़ी सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है। सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है। सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर के हा। सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निध पाई है। सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है। सलोक महला पहला सिर खुहाए पी है मलवाणी। जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडां वांगी सिर खोहायन। भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गवायन। टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा। मुए एक थाऊ पाही अठसठ तीरथ देन ना ढोई।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नापै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ।

चढ़ सुआया, नानक मंग दान जो तुझ पाया। सलोक महला दूजा, दीख्या आख बुझाया, सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है। जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे। कह कह कतना

खादा रज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

पै पौरख्या पाई सुवार रहाउ पै तन अगन पखै पै नाल पै पौ कड़ी है शब्द सुवार पै बिन काड़त कच न कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाउ सहस सियाणप पवै ना ताउ नानक मन मुख बोलन वाउ अंधा अखर वाउ दुआउ गौड़ी महला पहला

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लये साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाण, पीतर होंडी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाउ, ताके सद बलिहारे जाऊं, आप भुलाए ठौर ना ठाऊं। तू

खुलै पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए।

मन मान्य अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मान्या आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीर।

उठाऊ। नानक गुरमत सहज सुमाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम

पूजा मेवा मैं सब किस चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीम दवाल उसारी, पास मंदर की तेरी।

भोगत सह का पाना रहाउ साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी जियो पिंड सब रास तिस की मारे आपे जीवाले गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मार है लूट है नीत नीत किस आगे करी पुकार जना।

सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

जय रावल एहो मन की जय डंडाता जोग जुगत एव पाविसता एक शब्द दूजा होर नासत कंद मूल मन ला विसता रहाओ मूंड मडाए जे गुर पाईए हम गुर कीनी गंगाता त्रे पवन तारन हार स्वामी एक ना चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल ना जावसता एक सचरणी जे चित लाव है लभ लोभ की ताविसता जपस निरंजन रचस मना काहे बोल है जोगी कपट कना रहाउ काया कमली हंस एयाणा मेरी मेरी करत बिहानीता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछै पछतानीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एकै जे कर दृढ़ चित की जैरी जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जैरी मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समाव है अलख न लखना जाई रे रहाओ सक्कर खंड माया तन मीठी हम तो पांड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लाज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करह तेता दुख लागे गुरमुख मिले।

राम का मूड़े फिर पाछ पछताहे रे रहाउ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाओ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्शन रूप अपार मछली हुआ जल बसा जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सहु वसै हौ मिलोंगी बाहां पसार नागन हुआ तर वसा शब्द वसै पहु जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहारु तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पाव तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा

जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करहै मूर्ख आप जनाव है नच नच टपह बहुत दुख पावे नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवा लनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बौराना दूजे भाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हऊ मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन कौ बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई। गुर शब्द मारन

सब कोई, गुर शब्द समावे बूझै हर सोई, सुन सुन वेखै शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे गुण

रहाउ। असंत अनारी कदे न बूजै, कथनी करे तै माया नाल लूजै। अंध अज्ञानी कदे न सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस काल युग में कर्म धर्म न कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त न होई, गौड़ी महला तीजा ग्वारेरी। सच्चा अमर सच्चा पातशाह।

नाम जपो हो पवजल उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई। रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुकत हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए। दूजे भाई ना सेवया जाए, हमे माया महा बिख खाए। पुत कटंब ग्रह मोहया माए, मन मुखे अंदा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए, अन दिन भगत गुर शब्दी होए। गुरमत विरला बूझै कोय, नानक नाम समावे सोए। गौड़ी गुआर री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई। पूरा जनकार कमावे कोई, अखोट नाम तन हर तोट ना होई। ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै। गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे। आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे। नाम रपते पौजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा। हम मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजे निज करवासा। नाम रपते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है इनकी सच्ची बाणी। जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी। नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी। गौड़ी गुआर री महला तीजा, सतगुर मिले वड भाग संजोग। हिरदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए। जन्म जीत लाहा नाम पाए, रहाओ ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा। गुर कृपा ते किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करह आचार। बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास। जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही। जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पगा वरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

अल्लाह चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोबिंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे रहाओ ज्यों मिल बशरे गऊ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर घर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसै जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी ग्वारी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवै अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बशरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी ग्वारी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिबलाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी ग्वारी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत तारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

महला चौथा ज्यो जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी ग्वार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कै ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

धार रहाऊ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून ना।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कह किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है मेरा

अन दिन अन दया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड

था। इस गढ़ में हर राम राय है, किस साधना पावे तीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सत गुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आग है आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकसै फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर कह आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागी, राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ, कट कट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देवो काट गुरु कहो, मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागे, अंधियारै दीप ज्ञान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ, कर वस्त लही मन जागे, साकत बदक माया तारी, तिन जम जो हन लागे, हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया, वे आवह जाहे अपागी, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है, सिर बेचे हो सतगुर आगी, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत, गुर मिले आप गवाया, हम मैं रोग गया सुख पाया, तन तन गुरु हर राया, राम गुर कै बचन हर पाया रहाओ, मेरा हियरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड भागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल तुवे पाम गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगानी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, रा गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा।

तुर कर्मा सावण वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करी हा जियो मिल संत जना रंग मान रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठै टुल टुल मिलिया।

एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विकण हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुरु।

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगत उपाएदा मेरे गोविंदा हर आप खिलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो आपे जगत उपाएदा मेरे गोविंदा हर दान देवै सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है।

पंजवां राग गौड़ी गुआर री चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बेद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाईए हर राम सहाय रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया ऊचे मंदर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती घोड़े देख बगासा लश्कर जोड़े नेब खुआसा गल

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हो मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे भाई इयों पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए दिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्य लिहो सवार रहाओ अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत

तिस की ओट निमक माहे होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिस नो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावो हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआरी महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कटी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत कर मान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु न जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रगट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआरी महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किस नाही राख नहारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राख नहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

कर कीर्तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल।

पूर्ण पूर रहे हो सब जाय, गुर पूरै सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआर री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे।

रूपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी गुआर री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्जियो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नाट नाटक आखारे गाया, ता मह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईए, कहो नानक वड भागी पाईए। जां कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार। जो हलाहल सो पीवै बवरा, अमृत नाम जानै कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख चौरासी भ्रमता पेर। एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करहै बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवां, तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ। प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ, प्रभ किरपा ते बन

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरे, कमन सो जन जो सौदा जोरे, महल साहा का किन बिद पावे, कमन सो बिद जित पीतर बुलावे, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवा गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे के सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

सो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल, रहाउ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवां, जाके वस खान सुल्तान, जाके वस है सगल जहान, जाका किया सब किश होए, तिसते बाहर ना ही कोई, कहो बेनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ, सब ते ऊंच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार, सर्ब व्यापत पूर्ण तनी, जाकी शोभा कट कट बनी, जिस सिमरत दुख डेरा टह, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे, संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुर भेट तह मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच महराती, शीतल शांत गुरते प्रभ जाते, रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मह ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, साध संग जपियो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताज अभमान पये निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जस कानी।

नाम पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुर मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाय बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी जोत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहां सनिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कल युग मह मिले आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइए राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाव देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए सील संयम प्रिय आग्या माने तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वारी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच

दुख सुख सम कर जापै ताको काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाउ जाकै अचिंत वसै मन आई ताको चिंता कतहु नाहि जाकै बिन सियो मन ते परमा ताकै कछु नाही डर जमा जाकै हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ताकै सगल निदाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किना बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसले पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार्य गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमै मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

सेव आद पुरख अपरम पर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रव तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

देखाया गौड़ी महला पंजवां दलब दे पाई वडभागी नाम ना जपह ते आत्म काती मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम नाम बिहून जीवन कौन काम रहाव खात पीत खेलत हस्त बिस्थार कवन अर्थ मृतक शिंगार जो ना सुनह जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया केवल नाम रिद माहि समाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तरीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया

मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक कर्णहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवां संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे वड्डे भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जां कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवां एक सस्यों जा का मन राता।

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम।

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत मा

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ। नेतर संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन महलेख, सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मटाए। चरण कमल ठाकुर उरतार, दलाब दे नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा धारे, सोजन रसना नाम उचारे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम परम पौ भागै।

पहले करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां, छाड़ सियानप बहु चतुराई। गुरपुरे की टेक टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई। गुरपुरा पीतिया लिवलाई, रहाउ हर का नाम दियो गुरमंत्र। मिटे वसूरे उतरी चिंत, बंद पए गुरमिलत कृपाल। कर कृपा

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण।

जात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा साध संग ता की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाल नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पय सोहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसे आठाओ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाओ जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बिगानी रहाउ, नाम बिना नाही मुख भाग परत।

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै।

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़े महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक सेई जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किछ करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनहु बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बड़ियाई

मुक्त फल पाए। उक्त सियानप इसके कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

के किल विख खोए, सिमरह साधु करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वड ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याध उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवां, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए, रहाउ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जा।

कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी,

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सियों सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागै, हर संग राता अन दिन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाव, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहु मन माने, अगाध बोध हर अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन आखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दई गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कमन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवां।

मेरा हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

कृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तह तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरह नारी।

बसन सुहेला एह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी।

राखहु राखनहारी, खेद करहे और बहुत संताव है, आयुहु शरण तुहारी, कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ह कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निरपहु, गुर का शब्द कमाया, जीत लय ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते, एहो डरन कहां।

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पथ प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवां हौ तां कै बलिहारी जा कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग हुन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोगन अवद जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवां जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए इकतरा एक सके वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुरदिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा प्रभु की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवे जा को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गात्मित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती पोत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवां।
तुम हर से तीराते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ। तुमरा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो शरण अनाथ दीन कहो, करहो हमारी गाते। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुमरे हाथे, ऐसा निदान देहो मोह कहो, हर जन चले हमारे साथे। निर्गुण यारे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवां।

जारी मोको अचरज गुरह दिखायु पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायु अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन पह ठहरायु मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाऊ गवायु जो सो प्रसन्न पये प्रब ठाकुर सब आनंद रूप दिखायु ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायु कहो नानक अगम अगम है ठाकुर अगत टेक हर नायु गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाव मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई पल मानो सुख दुख योही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास ता की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहा उहा सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एह रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पौ है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू चली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाव वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुन गाई है नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्या ये रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्न ते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अहं रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुरदिया, नानक तां का पहो गया, गौड़ी महला पंजवां, जां को बिसरे राम नाम, ताहूं को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जां को गुरमुख हृदय बुद्ध, तां कै कर तल लव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ तनी, किस नाही तां कै कमी, करने हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जां कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दूख।

तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाही एह पैखर पए पैरा तब एहो कहा कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता आगे ठोर ना पावे ऊहा काम ना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे चतर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर
ਉਹ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਚਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੋ ਇਹੋ ਬੀਚਾਰਾ, ਜੇ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਗੁਰਸੇਵ ਹੋ ਅਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੋ, ਤਿਆਗ ਹੋ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ। ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਧੋ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਤਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਿਆ ਕਿਛ ਕਰੈ, ਕੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਹਾਥ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਤ ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ। ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ। ਕੋਟ ਜਨਾ ਕਰ ਸੇਵ।

तिस निव निव लागो पाई जियो। ओथी पंडत बेद खोजंता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपो नाम त्याई जियो। पये कृपाल स्वामी मेरे जियो, पथत पवित लग गुर के पैरे जियो। प्रम पहु काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो। जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभा वंता जियो। जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो। रैन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देओ संत।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा।

गुर प्रसादी सो हर हर पाही जियो। सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो। एहो नदान जपै बड़ भागी जियो, नाम निरंजन एक।

मारै सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातिया सुन कै चुप किया कद ही सुरतना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांज दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थां जम कंकर।

साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साध का तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर के

सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महल्ला नौवां साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनस पागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है तिन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसे एक अस्थर माने अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यू

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महल्ला नौवा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एहन समग्न रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो, एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधु इहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते फिर ना रहाई रहाओ। कठिन क्रोध घट ही के भीतर, जेहे शुद्ध सब बिसराई,

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवां साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवां को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महासंकट बन तास्यो रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम समावै गौड़ी महला नौवां साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब

गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावै सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल भावत फुन तावै साचे सूचे मैल ना पावै नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग दे।

सुभाय सेवा सुरत एक लिवलाय सुख मांगत दुख आगल होय सगल विकारी हार परोय एक बिना झूठे मुक्त ना होय कर कर करता देखै सोय तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाय गुरमती नाम हृदय वसाय साची बाणी हर गुण गाय तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज ठाव प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाय जम्मण मरना ठाक रहाय पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै।

हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी धंधे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाहो जे वाट दिखावे तिसको वाह वाहो जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाहो जे मेल मलावे वाह वाहो तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हऊ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईए हऊ मैं जाए परम पद पाईए रहाऊ हऊ मैं कर राजे बहुतावह हऊ मैं खपह जन्म मर आवह हऊ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नामे को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थोर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संगारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हो मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे अंतर तामस आप ना पछाणे ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावह सहज सुपाए बिन गुर साचे परम पलाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हों मैं मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता इन बिद कुशल तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हिरदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द वजाए सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी परम गवाए सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ त्रै गुण काले की सिर कारा नाम ना चेतह उपावन हारा मर जमह फिर वारू वारा अंधे गुरु ते परम ना जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिख का माता बिख माही समाई माया कर मूल जंतर परमाई हर जी

आए साच ना छपै जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हम मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए भावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कतंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कतंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई हुकम

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संग

स्मृति मन लह जाए, मन करहना मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए, मन करहला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगाह पहनाया, हर आप लया गल लाए, मन करहला गुर मन्या, गुरमुख कार कमाए, गुर आगे कर जोदड़ी, जन नानक हर मेलाए, गौड़ी महला चौथा, मन करहला विचारिया, विचार देख संभाल, बन फिर थके बनवासिया, फिर गुरमत हृदय निहाल, मन करहला गुर

होते है। हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया, सत संगत सत गुर भाल, सत संगत लग हर त्याई है, हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वडभागिया, हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टी है, सत गुर चरण संभाल, मन करहला मेरे प्यारिया, विच देही जोत संभाल, गुर नौ निद नाम वखालिया, हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला, चतुराई छड विकराल, हर हर नाम संभाल तू, हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड़ भागिया, तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया, जम मारियड़ा जमकाल, अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवह बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले, हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे ना उतरे, गुर सेवा शब्द संभाल, हम पंखी मन करहले, हर तरवर पुरख अकाल, वड भागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल, राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां अष्टपदिया, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद, जब इहु मन मह करत गुमाना, तब इहु बावर फिरत बेगाना, जब इहु हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कट कट चीना, सहज सुहिला फल मशकीनी, सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ, जब किसको इहु जान समंदा, तब सगले इस मेलह फंदा, मेर तेर जब इन्ह चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई, जब इन्हें अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किस ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किस कर माने पेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सब किस सूझिया, जब इह तावे माया अर्थी, नह त्रिपतावे नह ते सलाथी, जब इसते इह होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवां, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसके हृदय रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहा उहा जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह होमे भागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एह काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा,
जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जाको दया मया।

सहजे भोजन सहजे भाव सहजे मिट्यो सगल दुराव सहजे हुआ साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग सहजे ग्रह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन की नासी जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया ता कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्तर कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरै कमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरै ता सबको मीत हर स्यों जुरै ता निश्चल चीत हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जा कै काम उतरै सब भूख, जा कै काम ना जो है दूत। जा कै काम तेरा वड गमर, जा कै काम हो वह तू अमर।

भांत जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे कर की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसुआ पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ठ फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दास राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार।

था। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

जस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुरबादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख

सुन सुन पंत डराओ बहुत पै हारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उभारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बाहां लुडारिया, जन नानक लब्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन तरिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हम मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा घर ते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा।

हर के गुण सारे हिन पल रहे न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समा

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवै जियो, पावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाईए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज समाए। दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाई प्यारी, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्ज सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाए पुकारे। नानक मनमुख थाओ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवै। जीवतियां इउं मरिए, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हमै तात संसारे, जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरे कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वापारा। राम नाम वापारा, अगम अपारा। गुरमति धन पाईए, सेवा सुत भगत एह साची।
ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਮ ਮਤਹੀਨ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਅੰਧੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਵੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀਉ, ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੀਉ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੇ ਵਿਟੋ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला।

संत धर्मशाला धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासी मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मन है एक जी अवर सब राली मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श त्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल तिनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड़ जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान

कथे ना जाही। सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी। जित लग तरिया संसारी गौड़ी महला पंजवां सलोक। पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधी है। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधी है। कल मलै दहता सुध करता दिन सरैन अरादु। बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया। भगत वचल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू। सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है। नानक जरा मरन पै नरक निवार है। पनीत करे तिस जंत है। सुन सखिए एह भली बिनंती एहो मतांत पकाइए। सहज सुपाए अपाद रहत हुए गीत गोविंद गाइए। कल कलेश मिटे हैं ब्रह्म नासे हैं मन चिंदिया फल पाइए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आइए। सखी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागण पेखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद पली मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा।
गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करम जोग नानक एको रब रहया दूसर हुआ ना होग पौड़ी ओ अंसाध सतगुर नमस्कारन आदि मद अंत निरंकारन आपह सुन आपह सुख आसन आपह सुनत आप ही जासन आपने आपह उपायो आपह बाप आप ही मायो आपह सूखम आपह अस्थूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ।

ओं गुरमुख कियो अकारा एक है सूत पुरो मनहारा पिन पिन त्रै गुण विस्थारन निर्गुण ते सरगुण दृष्टारन सगल पांत कर करह उपायो जन्म मरन मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आछ अच प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापह ताहू जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बीचारी नानक जा को कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मह एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारो कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिह मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो न फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत तमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो।

बुझ सो प्रभ सदहु संग लेख गणत ना छूटी काची भीत ना सुध जिस बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना।

लवै न को एक आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

कारण करता सो लिखियो लेखना मेट तुको नहीं होत कस दो बारा करने हार ना भूलन हारा काहू पंथ दिखारे आपे काहू उद्यान प्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक हाथ खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिगसह अंध स्यों जा

नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माहि सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी। गगा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देहे का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं एठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी। कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे। कुलह तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया। सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार पौड़ी। गंगा अंगरासे काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए। गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट पए नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट पए आपह गोबिंद नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती सीतल मन सुखी

दास्त मारे दास दासन के पानी हारे सच्चा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शाड सियानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई सलोक जोर जुल्म फूले कनो साची दे विकार हम बुद बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी जज्जा जानै हौ कछ हुआ बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ ज्यो जानै हौ भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी ज्यो जानै मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता साध संग जे हौ मैं मारी नानक ता को मिले मरारी सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध कारह तुझै ना व्यापई नानक मिटै अपाद पौड़ी चज्जा चूरन मिटै तुमारू राम नाम स्यो कर व्यवहारू चूरत चूरत साकत मुआ जा कैरिदै होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिनस जात एत गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिए संग ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञान तो सोई संत।

अपदेसिया नरक नाही साध संग पौड़ी नन्ना नरक पर है ते नाही जाके मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मह ना हुए खपते नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे सलोक पात राखी गुर पार ब्रह्म ताज परपंच।

परमित पार न पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जप है मिल साधु, परपंच त्रोहो मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पातशाह सत्तर सिर सो, नानक दूसर अवरना को सलोक, फाहे काटे मिटे गवन, अतः पही मन जीत, नानक गुर ते थित पाई, फिर न मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ देह कल युग मह पाया, फिरया अवसर चरै ना हाथा, नाम जप हो तो कटिया फासा, फिर आवन जान ना होई, एक जप हो जप सोई।

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारै सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दर्ग है तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाऊ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवे।

योखिन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते।

हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी सस्सा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे ना जानत तत। लाहा माया कारणी दहंदस ढूंढन जाए, देवनहार दतार प्रभ निमख ना मनह बसाए। लालच झूठ बकार मोह या संपै मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए। तुद भावै ता बख्श लै खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हसत भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए। खिमा गही सच संचियो खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई अणद सूख विश्राम। खेप नबाही बहुत लाभ घर आए पतवंत, खरा दलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करह आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे घट घट रहा ब्याप। सलोक आए प्रभ शरनागती कृपा निब दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मह त्रे भवन प्रभ धारी, अखर कर कर वेद बिचारी। अखर शास्त्र सिमरत प्राणा, अखर नाद कथन वख्याना। अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा। दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निरलेपा। सलोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुखों तोहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संत है कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोधरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरुदेव याद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इह सलोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी।

सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम

जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते करे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

चार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदासत पीसर पीवै अग्न माहे होमत परान कनक अश्व है विर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी हों मैं मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि।

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम।

मान सगल कटा को देव दान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखान।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग।

दृढ़ कर्मान मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरत अनद उलास, अपनी अमान कस बहुर साहले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोए, बहुर उसका विश्वास ना हुए, जिसकी बसत तिसे आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माते, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक

लपट रहे हो तह अंध अंधार, बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरी, सलोक काम करो।

अष्टपदी यह प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे यह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है यह प्रसाद बस है सुख मंदर तिसै त्याई सदा मन अंदर यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना यह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग यह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावे है तिसै त्याग कत अवर लुभावे है।

ऐसा प्रभ त्याग अब रकत लागु हो, गुर प्रसाद नानक मन जागु हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल।

कथा साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अब महान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुले साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावे साध संग अस्थित मन पावे साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध क्या संग न कबहू तावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध क्या संग बसै थानी उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साध क्या संग दृढ़ सब धर्म, साध क्या संग केवल पार ब्रह्म, साध क्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध क्या संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरता जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग पै आग्याकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

न जाए अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

आर अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदासी।

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख ना करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी

के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इस काबल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई पुन थियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरक रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान,

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगहा कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भलाई।

तब इसको सुख नाही कोई। जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब लग

सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसे

जाय। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब।

चार अष्टपदी संत कै दुखने आर जा घटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे ना कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल किरपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै।

नानक ज्योतिष पाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत की ओह सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख।

बिरथा जन नहार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी

नानक सो जन सदा अरूग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो किसै चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले।

जंजाल तन तन कह सब कोए मुख पूजल हर दरगाह सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक तां कह सद बलिहार है चरण साध के धोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ऊट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिस का ओह करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया केहो लोय जा कै हृदय को होय सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाए सगल।

के पाए, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोई, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवरना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप तां को राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु पांत।

बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म ये कह आप नहीं कछ भरम सहस सियान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करन आगहने मन संतोख आतम पतियानी पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लये मलाए जिहवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए।

अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे, तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे, जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रव आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर गिण दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी, सलोक साथ न चल बिन भजन, विख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, इहो तन संचो हो।

0: हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, चित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, इउ रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करहु।

रहत रहत गत पावहु सार भूत सत हर को नाव सहज सुपाए नानक गुण गाव गुण गावत त्रिउत्तर सुमैल बिन सजाए हों मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल चाड़ सियान पसगली मना साध संग पावह सच धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां।

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते भये एक अराध परासत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपतानी पूर्ण

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथिन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाए तरिय संसार बिन

एक दर्श सुख हुए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया।

सुन समाती आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कलाया पह प्रवीन तह वेद कतेव कहां को चीन जब आपन आप आप उर्तारै।

नानक फल पावहु, फलत फलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाय।

निरपव जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा।

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप बलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदीस पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार।

जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए हेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम।

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फाल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रमतो घणो सदा संगारै नीच हरख सोग।

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै।

दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवा।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहु रंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझिऐ नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

नानक तिस बलिहार न हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुन गाई है तजी है अवर

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

संसार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद हिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइए नानक त्यो संजम प्रभ कृपा पाई।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राख एक ठाई मन तन शुद्ध।

नानक प्रभ स्यों मिल रहे। बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान। हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग। मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है। पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है, गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संत।

हों मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम तरन गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यों गुण गो

ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश को दृढ़ तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुख

सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जाने ओ प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए महला चौथा हो मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहं दे, होमै ममतावाद जिन सलाहन से मरह, खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिन्नी तू एक मन सच त्याया, तिनका सब दुख गवाया।

साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर सर।

सतगुरु सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू कर है सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों तिस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कह सब संसार, सतगुर विच आप वरतदा हर आपे रखण हार, तन तन गुरु गुण गावंदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपया सिरजनहार, महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन।

ये बजाए नानक दुही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वत हो साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है

हर आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो

आया पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे। तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके।

जिन्नी सतगुर पुरख त्याया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लाल चट्टिया मनमुख होरे गल्ला राती ऊंगै दबिया नवे सोत सब ढिला मनमुखा दै सिर जोरां अमर है नित देव है भला जोरां दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेर खला काम व्यापेक सुध नर से जोरां पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चले सो सत पुरख भल भला जोरा पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिया सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे से कूड़े आर कूड़े चा

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वो आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

मनदान हार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निहचल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करतै आप पचाया जन नानक गुण बोलै करते के भगतानो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चै पिछों दे आख्या कम ना आवै अध विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावै जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै ता अपिओ पीवै शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावै सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावै महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावै फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखै नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गूहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां वेमुखां दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुनै नफरै पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिलै ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवै तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवै सो नफरै हाथ आवै अणहोंदी कित्थों पाए
जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हवंदे, प्रगट पहारा जापदा, सब लोक सुनंदे, सुख ना पायन मुगद नर, संत नाल कहंदे, ओए लोचन उन्ना गुणै नू, ओए अहंकार सुनंदे, ओए विचारे क्या करहें, जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसे ना संदे, वैर करहें निर्वैर नाल, धर्म ने आए पचंदे, जो जो संत सरापिया, से फिर है पवंदे, पेड़ मडाहू कटिया, तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याईंदा, वड्डी वड्याई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु, कटै नाही एक तिल किसे दी कटाई, सच साहेब सतगुरु कै वल है, तां चक चक मरे सब लोकाई, निंदका के मुंह काले करे, हर करतै आप वधाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करहें, त्यों त्यों नित नित चढ़ै सुवाई।

रखै। हलत पलत सब तिसका गया, नित झहियां पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया। नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड गया। क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैरै नाल जे वैर विचारे, सब पाप जगतै का तिन सिर लया। ओस अगै पिछै ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया। जे सोइने नो ओह हाथ पाए, तां खेहू से तीर हल गया। जे गुर की सरनी फिर ओह आवै, तां पिछले औगण बख्श लया। जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान। जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान। उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया, सच शब्द निशान। सच जे सच्चे सेवंदे, तिन वारी सद कुर्बान। स्लोक

मिलन करतारी सत संगत ढोई ना लहन विच संगत गुर विचारी कोई जाए मिले हुण उना नू तिस मारे जम जंदारी गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़ियारी गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हथ एना वेचारी गुर चौथी पीढ़ी टिकिया तिन निंदक दुष्ट सब तारी कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सुवारी जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारी सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिख

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे ठारे सच सेव है सच वणंज लै गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कड ना सके।

ना होई, विष खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा होंदै प्रतख गुरु जो विछड़े, तिन को दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुँह फिके थुक थुक मुहे पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। जिन गुर गोपिया अपना, से लैंदे तहां फराही। तिनकी भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कुकाही। उना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी, उना अगै पिछै थां नाही। जो सतगुर मार

हृदय है जिन हर बसिया मन माहे हर दरगह ती मुखी उजले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भावसी।

हर हालत पलत छोड़ाई सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पाउंदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई।

मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो सद घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

है, क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हादी है, मल होमे कड्डै धोए, सच मणंजह रंग स्यों, सच सौदा होए, तोटा मूल न आवे, लाहा हर भावे सोए, नानक तिन सच मणंजिया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी सालाही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराली, सच सेवी सच मन वस्से, सच सच्चा हर रखवाली।

होई राग सुलखणी जे खसमै चित करे भाणे चलै सतगुरु कै ऐसा शिंगार करे सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे ज्यों उबली मजीठै रंग गै गहा त्यों सच्चे नो जियो दे रंग चलूलै अतरती

उठा सतसंगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भुलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सत्यारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लड्डो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाइए लोचिए बिख कड्डै मुख उगलारे हर साकत से

उत्ता सतगुरु पुर के अगम है, जिस अंदर हर उर तारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया, सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया, सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब उभारिया, जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारे मारिया, यही गल हुए हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम बिचारिया पौड़ी, सच सुतिया जिन्नी अराध्या, जा उठे ता सच चवे, से विरले जोग मह जानिए है, जो गुरमुख सच रवे, हौ बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे, जिन मन तन सच्चा भामदा, से सच्ची दरगाह गवे, जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे, सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास ग्रास ना विसरे, से पूरे पुरख प्रधान, करमी सतगुर पाई है, अन दिन लगे ध्यान, तिनकी संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान, सौंदे वाहो वाहो उच्च रह, उठदे पी वाहो करेन, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन, महला चौथा, सतगुर सेविया अपना, पाईए नाम अपार, भौजल डुबदियां कढ लए।

वंदे शब्द लगावन हार, जन नानक जिन को कृपा पई तिन सेविया सिरजन हार पौड़ी। सच सच्चे के जन भगत है, सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादया। सच साहेब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड्डा है, सच सेवन से सचर लादया। सच सच्चे नू साबास है, सच सच्चा सेव फलादया। सलोक महला चौथा, मनमुख प्राणी मुगद है, नामहीन परमाए बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल होहे, ता सतगुर मिलिया।

बहु बिदरंग सुभाय सतगुर सीती मन रत्ता रखिया बणत बनाई जिहवा सलाहे न रजई हर प्रीतम चित लाई नानक नावे की मन भुख है मन तृप्तै हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वडियाइया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया सलोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़ महला तीजा माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै तू करता आप अगणत है सब जग विच गणतै सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनतै तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलतै सतगुरु नू मिले सो हर मिले नाही किसे परतै सलोक महला चौथा एह मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइय चित क्यों सास ग्रास वसारी है बहंदिया उठदिया नित मरण जीवन की चिंता गई एह जियड़ा हर प्रभ वस ज्यों भावै त्यों रख तू जन नानक नाम बखश महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बलाइय महल ना आवे क्यों कर दरगाह सीजे।

सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या, तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना, तिस ठौर ना ठाउ। हलत पलत दोवें गए, दरगाह नाही थाउ। ओह वेला हथ ना आवई, फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणतै कुसी है, दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उत सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

पुन्य नित परमल हिरते किया ना जाने किरत घन विच जोनी फिरते सबे तिरा निखुटियस हिर लईस धरते विजन कलह ना देवता ता लय करते जो जो करते हमेव चढ़ धरती पड़ते। सलोक महला तीजा गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए हर गुण गावे हिरदय हार परोए पवित पावन परम बीचारी जे ओस मिले तिस पार उतारी अंतर हर नाम बासना समाणी हर दर सोभा महा उत्तम बाणी जे पुरख सुने सो होए निहाल नानक सतगुर मिले पाया नाम धन माल। महला चौथा सतगुर के जी की सार ना जापै के पूरे सतगुर भावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नू लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै गुर सिखा की घाल सच्चा थाए पावै बिन सतगुर के हुक्मै जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवै गुर सतगुर अगै को जियो लाए कालै तिस अगै गुर

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध

स्थान तनंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी।

मुखी उजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस किसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर धरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अराते है कारज आवै रात महला पंजवा जित सिमरत संकट छुट है आनंद मंगल बिचराम नानक जपिया सदा हर निमख ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिनी हर हर लगा साधा सरणी जो पवे तो छुट्टै बद्दा गुण गावे अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

देव गुत्ते करतब करन पलेरिया मद माया सुत्ते फिर जून पवाईयन जम मार्ग मुत्ते कीता पायन अपना दुख सेती जुत्ते नानक नाए वसारिया सब मंदिर उत्ते। श्लोक महला।

जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़े दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिय गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

एक जिस तो सदेव आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट्ट है जिन हर धन

सास पार ब्रह्म जिस विसरे इस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सपाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरे दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण इको सिमरी।

पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखै लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ ला।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

जगत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

तब जानोगे जब उगरे गोपाज कहो कबीर पात हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाइए जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिय पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस जंती में

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग

सब दुनिया गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सोग करीजै तौ कीजै जो आपन जीजै मैं ना मरूं मरबो संसारा अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाओ या देही परमल महकंदा ता सुख बिसरे परमानंदा कुटा एक पंच पनिहारी टूटी लाज भरे मत हारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओह कुटा ना पनिहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बहुरंगा ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी साकत मर है संत सब जीव है

पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर।

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भय है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भय है मीता, साकत उल्ट सुजन भय चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत पई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट पई सुख सहज समाध,

भागी गौड़ी कबीर जी जिह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अना

जब लग रथ तब लग नहीं नेह रहाउ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन गृह।

चौड़ कत बोड़ी, हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ, तुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पास पीवस ना झाग, चेतत चेतत निकस्यो नीर, तो जल निर्मल कथत कबीर, गौड़ी कबीर जी, जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी, विधवा कसना पई महतारी, जेहे नार राम भगत नह साधी, जनमत कसना मूह अपराधी रहाओ, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जी।

नहाउ तिन कै सद बले हारे जाऊं सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरे मन पावे रहाउ जेहे कट राम रहया परपूर तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान भी चारा रहाऊ, सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

तुझ ले तारू चाहता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

व्यर्थ माया, कैसे जीवन हुए हमारा, जब ना हुए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी, जेहे सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग, इस तन तन को क्या।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुहार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया, अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ, साधु संगत दियो रलाय, पंच दूत ते लियो छडाय, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना, सतगुर की

प्रज्ञा अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखों ताते अंतर जामी अपनी।

सूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फोन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक सूतक श्रवनी होई ऊटत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई आसन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे एह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर

गुरुप्रसाद जीवत पितर न माने कोहु मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, दिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआ या स्थिर राखो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सख्त अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावे, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खाट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरै, नातर था बेगाना रहाऊ, निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर्म

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे तां सुहागन जानी गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए

रहाउ। खंड ब्रह्मांड मह सिंही मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी न मिनिय तोल न तुलिय पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है

संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूतन को सहसा परिया मन बौरारे नाचियो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बौरारे माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नावन को तीर्थ

गौड़ी अग्न ना दहै पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवै राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावै हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाउ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहबा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यो कप के कर मुष्ट चनन की लुभ ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो रहाओ ज्यो उद्यान कुसम पर फुलत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कछ आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ जां तिस भावै ता हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंघावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठोर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान।

होए कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिहे घट बसै मरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपै सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो

करे उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पांच पहरुआ दर मह रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत हुए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहू कहू ता को पकार भटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जी तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

आई कग्गा काट काट निमसै सोई काट फूटे काट कबह ना होई ता काट माहे काट जो पावा सो काट छाड अब कट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह चचा रचत चित्र है भारी।

यह है शत्रपत पासा शक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो

परवाना। कत झख झख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नया निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जां कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

जाई। तन त्रि भवन मह रहो समाई, जो त्रि भवन तन माहे समावा, तो तत्त है तत् मिलिया सच पावा। थथा अथाहा थाहा नहीं पावा, ओह अथाहा एहो थिर ना रहावा। थोड़ै थल थानक आरंभै, बिन ही थंबै मंदर थंबै। दद्दा देख जो बिन सनहारा,

अर्ध उर्ध मांज बसेरा अर्ध चाड उर्द जो आवा तो अर्ध उर्ध मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे

उन मन रह तो तीन लोक की बातें कह जैया जो जान तो दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत ना जाए।

होवे, एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो, घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ, पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा, तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै, सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा, तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत।

अकुल निरंजन एक पाय तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर भीतर सदा परगास चौथे है चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सीओ। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

माही, ऐनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभै जान, रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मोरे मोसौ को न कह समझाए जाते आवागमन बिलाय रहाउ बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो, तिन टूटी जम की पासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो, तिन का भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप तापह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको।

जानोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदी कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई।

ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सतु सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया। तुदमन सिद्धि किनै ना।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

कहिया सर्ब निरंतर रब रहिया नाल कटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा भया रतन उपाय तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजे शब्द निरंजन किया करे वखियान जाने जे कोई अमृत पीवै सोई रहाउ जिन पिया से मस्त पए हैं टूटे बंधन फाहे ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्ब ज्योत रूप तेरा देखिया सगल पवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावै जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता।

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बी बेक बीचार हमरै घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तिहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्ज आप सवारी पूर्ण कार्ज ना हुई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाव सतगुर सेव पाए निज थाव मन चूरे खत दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिपत सलाहन।

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

सात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेते एको सो होए हासा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन मह ठौर ना पाव है से कर्महीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

खेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी ज्यों जल अंब ऊपर कमल निरारी बुरा भला कहो किसनु कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

प्रगट जाय, सच निशान ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना होए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसन रास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कलपै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रहै समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार, हौ पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै, मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो, जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दिरड़ाई, सगली सौदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन भावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी तां पर उपकारी, जां पंच रासी तां तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहु जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहु जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहलाधो पदे तित सरवरड पहले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया हासा महला पहला।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां थी जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू नखूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक साधिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाव। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल

कराया, तिस क्या कहिए भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद पावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाहा बहुता बोले, नाओ पवे बाजारी, सतरंज

कोई। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची वाणी पाए भाग कोए।

हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा आतस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा,

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधरे रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गवाई।

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावे खसमै का महल कदे ना पावे दूजे लगी पत।

पार रहाउ। सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर गावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार, नेड़े वेखे सदा हदूर।

ताय अवर ना कोई गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरै भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

ना जाई, पूरे सतगुर दित्ती वड़ियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सो काले थाए ना।

कहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहुवाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बलै ना सोजी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जियो आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझे सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाइए गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंद गुआर हर कै भाणे जन सेवा करे बूझे सच सोई हर कै भाणे सलाहिए भाणे मने सुख होई हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

बाजी हारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी कालयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनों कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे आसा महला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़ी।

ओ गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ, नाम मैं सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवे हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी।

जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

आवत जात बार खिन लागे, हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई, हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा, कब को मेले पंच सत गायन, कब को राग धुन उठावे। मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, तब लग मेरा मन राम गुण गावे। कब को नाचे पाम पसारे, कब को हाथ पसारे। हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे, तब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पते आवे, लोक पतीने ना पत होए। जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो, ता जय जय करे सब कोई। आसा महला चौथा, सत संगत मिली है हर साधु। मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के धोवे है पाए रहाओ, हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिब लाए।

आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से ही संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए नानक आख नाराज हर गुण ज्यों आख है त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवा की काफी महला चौथा आया मन तुरा हो मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर हुई है गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जूए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया हासा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ अन दिन नाम ते आए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ हउमै गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ अन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुर मोको हर नाम बताया हौ हर बिन किन पल रह ना सको रहाऊ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन हौ हर बिन रह ना सको हौ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई हम हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कैताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख सरन जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरही तिन हुए ना आपै। एक सती कहावै है तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सबाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे।

मानी, तुरिया गुण मिल साध पछानी, सहज गुफा में आसन बांधिया, जोत स्वरूप अनाहद वाजिया, महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रिय सो राती धन सुहागण नार, जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार, जन्म ना मरे ना आवे ना जाई, हर सेती ओहो रहे समाई, आसा महला पंजवां, निज भगती सी।

परदेश झाग सौदे कौ आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ हो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास।

माना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जान है एह लोग अजाना रहाव, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सुबा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, सद कुचियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जोह पिरह शिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा, दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन्मुख कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुभाय रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

सिर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाव। जे कोई उसका संगी होवे, नाले लए सदावे, अनहुंदा अजगर भार उठाए,

मरना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर होएगी।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन न रहे कैसे मिलू प्यारी एक पल दिन समो को कबहू ना बिहावे।

चहो जुगह समानी, रैन पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

करने दान अमृत सार साधे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु ना जाई रहाओ तोट ना आवे नखोट ना जाए। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानहु मुआ। गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात रैन।

कै सद ही संगा, कुदरत वर्त रूप अर रंगा, करह ना चुरै ना मन रोवन हारा, अवनासी।

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

रहाउ। त्रिपत अगावन साचै नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय। सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक। दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवां, बुद्ध परगास भई मत पूरी। तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले। बूढ़त कोर अंधकूप में।

यही व्यवहारा भाग्यमान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पाव है किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुऐ हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

जंत करहै चतुराई जा सब किस तुझे मजहार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आदि राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबह हस्ती अर कोड़े लाल लाख बै आनी आगे दरगह काम ना आवे छोड़ चले अब मानी काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा।

एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म मैं सोई सगल जगत धन अंध को जागै हर।

लागै साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवा महला पंजवा जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावह मसलत मता सियान पजन की जो तू करह करावह रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारी साध संग रस पाया तृप्त अगाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया।

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाहे पचावै निंदक अहला जन्म गवाया।

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को

पाया। कूड़ कपट बंच निम्नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागै।

मन की होर किस पह आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

कह जिस जाने ऊपर तेरी कृपा तिसको बेपना को पाख है ओहो सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख घनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ले हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया। सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया। हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया। हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया। शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया। ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी। आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है भाई रे रहाव। सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई। अमृत फल ना

तेरै ओलै। भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ, हुक्म बूझ रंग रस माणी। सतगुर सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

रतन जन्म एहो सफल भया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुर अपना सद सदा संहारी, गुर के चरण

कोट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत भय दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा राख।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोहो सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम।

ना जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिल बे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

जाकै ग्रह सब किछ है पूरन, सो भेटिया निर्भय धनी रहाउ। नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल। ठाकुर

पंजवा ठाकर सिंह जाकी बन आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ, जाका तनी अगम गुसाई।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल कर पा।

मेला उनकै संग हम तुम संग मेल उनकै संग तुम सब को लोरै ओस बिना को मुख नहीं जोरै ते बैरागी कहां समाए तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ उनकै संग तू ग्रह महमाहर उनकै संग तू होई है जाहर उनकै संग तू रखी पपोल ओस बिना तू छुटकी रोल उनकै संग तेरा मान महत उनकै संग तुम साक जगत उनकै संग तेरी सब बिद थाटी ओस बिना तू होई है माटी ओह बैरागी मरै ना जाए हुक्मे बादा कार कमाए।

ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

गर्व मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिलिय तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छुट्टो।

पाठ घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी दीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोड़ह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

सगल सूख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुण गाम, महापवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकी गात मित कह

देहोर लाई, नानक आए पई सरनाई, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही।

रखे लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

हर जसै अगाने जप जप जीवा सारग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै।

सूख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट करूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जां का दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहे निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाउ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन

आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाव भोग है भोग अनेक बिन नाम है सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना महा बिखम संसार बिरले पीखिया छूटन।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया परपूर सच

आनंद घना मिथया मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आव हो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

भाव कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई सुहागण नानका जो पाणी करतार री आसा महला पंजवां दीगण डोला तौ लो जो मन के भरमा भ्रम काटे गुर अपने पाए बिसरामा ओए बिखादी दोखिया ए गुरते हूटे हम शूटे अब उनाते ओए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवां सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाव ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर

एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभु पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्स पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्तर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चाल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू ढीला ढीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर

गंधण वहन सुनह उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे

कै साध लुभाए झूठ धंध दुर्गम दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटै बहुर बहुर जन्माते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

आद कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोहत रंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

आवे रहाउ तिस सेवक कै हो बलिहारी जो अपने प्रभु भावे तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसने आवे आसा घर ग्यारवां महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ भेख दिखावे बहु बिद जैसा है ओहो तैसारी अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर सुख नाही परवेश सारी साजन संत हमारे लीता बिन हर हर अनीतारी साध संग मिल हर गुण गाय एहो जन्म पदार्थ जीतारी रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी कहो कमन बिद तरिया रे कुमन केर अगाह गाखरी गुर शब्दी पार उतरिया रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पथियाना रे आसा महला पंजवा दुपदे गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण दे।

तिन जान मिर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुरनिमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरा।

भौजल लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिया मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग।

डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत, सास सास त्या

त्याग सगल सियाणपां आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाए संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बड़ी बड़ियाई जप

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई आप।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

उस्ताद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए

प्रभ त्याव भ्रम पीत जीत मटाव निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवा घर सतारवा असावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गोविंद करहां हर हर मन प्यार।

तिस पुखान हा नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुणी हा जपिए सहज तुनी हा साधु रसन पनी हा छूटन बेद सुनी हा पाइए वड पुनी मेरे मना रहाऊ खोज है जन मुनी हा सर्ब का प्रवतन।

मना असावरी महला पंजवा एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आगे आ सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख

सतगुरु प्रसाद। राग आसा महला नौवा, बिरथा कहो कौन स्यो मन की, लोभ ग्रसयो दस हूं दिस धावत, आसा लाग्यो धन की रहाओ, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की, मानस जन्मे अकारथ खोवत, लाज ना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कमत बनासै तन की, राग आसा महला पहला, अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर अब कट सरवर नावे, बकै न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत झोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ, सच ब्रत नेम ना काल संतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कारण तत् बलोवे, सुपार सरवर मैल ना धोवे, जैस्यो राता तैसो होवे, आपे करता करे सो होवे, गुर हे वसी तन अगन बुझावे, सेवा सुरत बेभूत चढ़ावे।

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखी।

को रोवै दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

सोग अमृत ज्ञान महारास भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आप।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊ, गुर प्रसादी कर्म कमाऊ, नामे राता हर गुण गाऊ, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हौमै कौरा, रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली

ग्रास इकत थाएं किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुरचर निवासा नानक हर जन के

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे विस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

दुख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग। नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

साहा संचह धन जाए, बिन हर भगत ना पवी थाए। बंधन बेद बाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम सरनाई, सतगुर राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदिया।

दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामन, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, हो या शाई माई, इस जर कारण कणी विगुत्ती, इन

भाणे होवे किस थे जाए रुआईए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसै नानक लिखिया पाईए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग

सच ना पाया, क्या भविय है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया, रहाऊ सच मिले सचिया।

बख्शनहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला, क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

मन भावई चलै सदा रजाई अंक सुमावई सच्चा साहिब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाइयां दे टूट ना होई अबे तबे की

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सास्त वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप ना जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरै आणी चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताका हुक्म न बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगह जुगह के राजे किए गाव है कर अवतारी।

मन वसाए तू आपे आए मिलै मेरे भाई। अनदिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई। एको नाम त्याए तू सुख पावे है मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ। इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए। पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए। आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई। जी जंत सब तिस दे सबना का सोई। मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई। इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा। आप भवाली दितियां न अंतर लोभ वकारा। एक आपे गुरमुख कीतियां बूझन विचारा। भगत पियो नानो बख्शियां अंतर भंडारा। ज्ञानियां नो सब सच है सच सोझी होई। कोय भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई। कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी। नानक बिन सतगुर वासना आवनी। नाम हों मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वत है बाहर किश नाही। गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई। सतगुर ते हर पाई है पाई। अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाउ। हर का गाहक होवै सो लए पाए रतन विचारा। अंदर खोलै दिब दिष्ट देखै मुक्त भंडारा। अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा। पारखियां वत संभाल लए गुर सोझी होई। नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावै कोई। बाहर भाले सो क्या लह वत करै अंदर पाई। भरमे भूला सब जग फिरै मनमुख पत गवाई। घर दर छोड़ै अपना पर कर झूठा जाई। चोरै वांगू पकड़ियै बिन नावै चोटा खाई। जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई। आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई। नानक

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नामे कोई ना मनिए मनमुख पथ गुआई जमपुर बद्दे मारिय है बिरथा जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हो ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनु देवै तिस मिलै गुरमती नाम बुझाई नानक सब

आप दे आज्ञा जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावणी झूठे ठाऊ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

कहे बहुविध श्रिष्ट उपाय हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार इक ना बख्श मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उत बताए नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

अवसारिया से मुए मर जाहि हर रस साधना आयु बिष्टा माही समाहि एक आपे बख्श मलायन अन दिन नामे लाय सच कमावह सच रह सच्चे सच समाहि बिन शब्द सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाय बिन नावे दुख पाए सी नाम मिले तिसै रजाय जिन बाणी स्यों चित लाया से जन निर्मल परवान नानक नाम तिन्ना कदे ना विसरै से दर सच्चे जान आसा महला तीजा शब्दों ही भगत जाप दे जिनकी बाणी सच्ची होए विचों आप गया नाऊ मन्या सच मलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिन्ना का जन्म है तिन माने सब कोई रहाउ हऊ मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवे निध पाया परे अखुट भंडारा आवह इस राशि के व्यापारिये जिन्ना नाम प्यारा गुरमुख होवे सो धन पाए तिन्ना अंतर शब्द विचारा भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरों आप खुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना होवे ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन पीर जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय को नाम वसै हमें दुबदा मार भगता की जात पात एको नाम है आपे लए सवार सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्य सार भगत नराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हृदय वसै पै भगती नाम सवार आसा महला तीजा अनरस मह पलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाए रहाओ इस युग मह गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाय बिन कर्मा किश पाईए नाही क्या कर कहया जाय आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाय इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भलाय दुहागनी फिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रृंगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी श्रृंगारियां अपनी सह लइयां मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजले तित सच्चै दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मुरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहि खिन माहि, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाई, सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पावह ठाव, मीत साजन सुत बंद पा को होतना साथ, एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ, चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते, भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यों नेह, साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास, जो तुद पावे सो भला तेरे पाणे कारज रास, सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद, कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाय। जो तू कराव है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नान

सत्सै सोहे श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देव है बीरा तौ पढ़िया रहाओ, ईवड़ी आद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा मह जो गुरमुख बूझे, तिस सिर लेख ना हुई,

आद पुरुष अपरम्परु तारीनाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हम मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोडो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक करी मह खोवे हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बिचार जियो तू सबनी ताई जितै हों जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवे गुर शब्द कमावे कबहू ना आवे हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल टूट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सुकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

करहु ता फिर सह खुशी न आवी। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे, कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाणे। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले। जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे। साचे नाल तेरा गंड लागे, गुरमुख सदा संभाले। यूं कह नानक जह मन तू धामदा, तह हर तेरे सदा नाली। सतगुर मिले तावत थमिया, निज कर वसिया।

सहज धुनि उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाए यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी वधाई।

परम फुले तिन सह आप पलाए दूजे पाए फिर हैं हम मैं कर्म कमाए तिन सह आप पलाए

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारत बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचै त्याया।

मुख गवाई, मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा, नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम, किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पै अपागी, जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चराया, महाबिखम जम पंथ दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरमुख नाम ते आया, ता पाए मोख द्वारा, रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम, एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, परमदा इकत कर आणै राम, मन इकत कर आणै।

जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

भनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अरादिया जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई। हर दरगाह पावे मान जियो, सत जुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो, एता जोगे आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए दियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया। मन हृदय क्रोध जलाए दियो, मन हृदय क्रोध महा बिसलोद। निरपता वह लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना। हों मैं अहंकार वधाया, हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर। देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो, एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाय जियो, तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है। हत किरिया कर्म कमाए जियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया। दोए पग टिकै टकाए जियो, महाजुद जोद बहुकीने। विच हों मैं पचै पचाए दियो, दीन दयाल गुर साध मलाया। मिल सतगुर मल लह जाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया। हर कीरत हर शांत पाए जियो, हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई। हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावे। सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया। मन हृदय नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए जियो, आसा महला चौथा। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सुहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरेव है, खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

गोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया, किस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया। सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई, ज्यो भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह, सब तेरे शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै, तेरे शब्द वडियाई, गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ। शब्दे रहया समाई, तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ।

मेरा मन तनो भिन्ना जन नानक मुसक च कोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जाप अनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्चल हर बिरद है।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। हासा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी। जे बाहर हूँ

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया,

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ह मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा।

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख।

सहज भया ग्रहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियो मन।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रा

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम त्याया जूए जन्म न हारे, बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरन तरिय अपने प्रभ पावा।

राम राजी मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजी हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हूं मैं बिनसी गांठे प्रियो सहज सुभाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजी गुर पूरै अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी।

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना सो।

जम पंथ भणी तह साध संग ना डरपीए कर कीरत गोविंद गुणीए सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर सिउ नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हथ लाइय चित।

पेटे साध जब हर पाया मन माहे संत जा को खोजह असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराध ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ अराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत हुए गते कोट बिसन अवतार संकर जटा तार चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात पतत पावन भगत वचल नानक मिलिए संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी आसा महला पंजवा सलोक उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है पावन पतत पनीत नाम निरंजना परम अंधेर बनास ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल फल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया मिटे तिसैव सूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उदरन हर हरि सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी आद अंत बेअंत खोजें।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

आवे अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरै ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटै संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

होए अंते मिले गोपाल चंत मिलो संपन कह संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम देहो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहू ना तामो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसे जोबन बदे जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत ना

ला पंजवा पुरख पते भगवान तां की शरण गही निरपव भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भय राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरल किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवां शंत कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारे जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखहगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया।

सहज सरस्ते हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज बटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमह हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही ले चले कत गलावया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही की आय अपना पायु गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करनी नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की सरनी।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिध चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चल तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। पाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही। बिनवंत नानक

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवद अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पेख

करत ना लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार। एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी मन।

दूजा एहो जग सच्चै की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे वनास इक ना पाण कड ले इक ना माया विच निवास एव पे आख ना जापई जे किसै आणे रास नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना मैं धर्म बहालिया

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

अवतार। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभमान। कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। नानक हुक्मै अंदर वेखै, वरतै ताको ताक पौड़ी। आपी न भोग भोग कै, होए भसमड़ भौर सदाया। वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया। अग्गै करनी कीरत वाची है, बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्त ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारो ले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई है जंत, नानक पौंदिया गणतना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसह चलह से रोए, उड़ ना जाही सिद्ध ना होहे।

सब तिसदा देखा जै आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करें दी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

तहों उपजे कित संजम एह जाय हम एहो हुक्म है पय किरत फराहे हम दीर्घ रोग है।

नानक कह सुनहु जनहु हित संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया होनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया होनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

किया। चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे, जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस दे बान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिनके

वास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल काल कबेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहे बाहरा होरे रंग ना सोए भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह बाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

पर सबको पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाईए, ता नानक तोलिया जापे महला पहला, वधी सो वजग

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक

अखंतर पाह जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाव खदाई अल्लुह भया।

कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने हुए प्रवान, ता खसमै का महल पाए सी। खसमै भावे सो करे, मनहु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तरण ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़ै कतेबा, संजम तुरका पाई।

ताग, तिनकर ब्राह्मण पूरह नाद, उना ते आवह ओई साद, कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करह आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर, मत्थे टिका तेड़ तो तीक खाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर हो वह परवान, मलेश तान ले पूजह पुराण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा। सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड्डी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर गुजन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

पहला नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का हुई फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटिए मोहे तुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए। महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ जित कीता पाईऐ अपना साकाल बुरी क्यों कालीऐ मंदा मूल ना कीचे ही दे लम्मी नदर निहालीऐ ज्यों साहिब नाल ना हारीऐ ते वेहा पासा ढालीऐ किश लाहे उपर कालीऐ सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद गल्ला करे कड़ेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग ओए हर के संत।

गया ना बाजी हारी, मुई मेरी माई हों खरा सुखाला, पहरों नहीं दगली लगे ना पाला, रहाऊ

आव आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर इो राम जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे

आवे, घर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाऊ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहरी काया कर तुई दृष्टि।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचेहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ढट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते।

अखंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया। चिंत भवन मन

सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को पा

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

है रखवाद ना की जय रे मन, सो कृत कर कर ली जय रे मन रहाओ। कुमार है एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया, मुग्ध कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागे, किन मह करे निवेरा। हर जाने उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावे सत

संग रहती सुरत माही जो निरति करती कथा वार्ता कहती रहाऊ बजावन हारू कहाँ गयू जिन एहो मंदर कीना साखी।

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहे रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

हो दुख कासो कहूं रे रहाओ, बाप साब का करै लराई, माया सद मतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तब हो नाह प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब

तार चिरायु हो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सो मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जै पास ना देख आग काल पास ना मुग्ध चेत कनक कामन लाग कर विचार विकार पर हर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे अब पुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे लाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे ता ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीतर।

पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन पेर एक संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ। कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद।

जाना सब जागे अनत नायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे किस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे ना ही राम अयाना। पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवे है मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सद केला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काहे करूं।

जन्म दैला गुर उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख बनास पंच दोख असाद जाम है तां की केतक आस माधो अविद्या हितकीन दुबेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम ए रंड बाप।

सतसंगत शरण तुम्हारी, हम यौगन तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदपम खीरा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरी।

तो दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है देख देख सुन बोले दौर्यो फिरत है रहाउ। जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रास कसै लुभाना बिन

सतगुरु प्रसाद, भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाके, अशली प्रभ पहचानिया, धन्य धन पाया धरनी तर, मिल जन संत समानिया, महला पंजवां, गोविंद गोविंद गोविंद।

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मह गणिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड़ भागा रे चेत चेत सकी ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हमारा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहिया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तोड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछै।

अण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जो तमरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगरा दोह लोचन क्या हेर अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेर सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसर दूजे लगे जाए।

होवई, जीवन पदवी पाए रहाउ। गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समई, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईऐ, जे लोचै सब कोई, कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है।

हो गई। वेखो को व्यो पाए बलिहारी गुरे अपने, सत बलिहार जाऊ सतगुर मिले हर मन वसे, सहजे रह समाई रहाउ जा पहु पाए अपना। बैराग उपजे मन आई, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई। से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई। नानक गुर ते गुर होया

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, ता हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरख।

अनस खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाउ सुख साध

मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगहा हर हर दे वडे आई धन पन सबास कह प्रभ जन को जन नानक मेन लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ तारी हरे आपे गुरमुख मिले मला।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन

नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ। भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई सो हम करह जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर

सरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरियाचार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

ग्रस्त उदास गुजरे महला पंजवा नाम निदान जिन जन जपियो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता एह व्याध ते हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाउ जो किस कियो सोई पल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे।

कोली उच्चा, तिस संग मन बांछत फल पाया, लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मह त्रिशन ना बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी, फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण धूर जन बांछे, सुख नानक एहो पाया, गुजरी महला पंजवा, पंच पदा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रथमे गर्भ माता कहवासा, मुहा छोड़ धर्म मह आया, चित्र साल सुंदर बाग मंदर, संग न कछु हूं जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लबी, गुरपुरै दियो हर नामा, जी को एहा वस्त फबी रहाउ, इष्ट मीत बंधप सोत पाई, संग बनता रह

सत्य हसिया जब अंति अवसरियाई बनियो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहादी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पाड़ा मिलिया होर सगल पयो।

ते पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ तिन्ही रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ट को धनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद

पवित्र कथा गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानत जन को कछु न आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभु को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर्म धर्म हर कीर्तन।

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिन की हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

ते ताई साध संगत को जोहे ना साकै मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत परजारे मोह को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए रहाओ मोहे सरन दीन दुख भजन।

चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाव, पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवां, गुर प्रसादी प्रभ ते आया,

मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाऊ कर अनुग्रहो प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ सात शरण परिओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चित हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी

डाला। सर्वज्योत निरंजन शंभू छोटो बहुत जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला। मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला। सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जाने रोगी। तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदे गिरी जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया। मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

है बूझ अंतर शब्द विचार। अब तबे अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

काई गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत पत पाई भाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बडाई रहाव ऐ जी बहुते भीख करह पिठिया को एते उदर भरन कै ताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी।

सोग बजोग विसर्जत रोग पाई रे। गुर कृपा से भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मल, ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ। हर गुण रसन रवह प्रभ संगे, जो तिस भावे सहज हरि। बिन हर नाम वृथा जग जीवन, हर बिन निफल मेक करी। ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर, निंदक गत नहीं काई। रोस करै प्रभ बख्शना मेटै, नित नित चढ़ै

प्रभ बख्श मलावे बिनमना अदुआराई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई ऐ जी सदा दयाल दया कर रवया गुरमत भ्रमण चुकाई।

मनमुख भगत ना होई, सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुन जन ज्ञान बीचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुमारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे हैं खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाच है, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाइए जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

भट्ट जना की कथा न पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवे ओहो मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर ना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवां घर दूजा।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निध होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस हरीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करी पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वार।

सत्यो मन आई त्रिग अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आय माया छोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो।

आए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर, हुक्म पी तिना मनाए सी। जिन को नदर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मोई कंतना लायो पावो, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ।